0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র অথবা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তায় আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ উপকূলে 31 অগস্ট 2026 পর্যন্ত ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে, যার গতিবেগ বেড়ে ঘণ্টায় 60 কিলোমিটার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। মৎস্যজীবীদের 31 অগস্ট 2026 পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ উপকূলে সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা, সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সকাল 6টায় সংবাদ দিল্লি কেন্দ্র থেকে। গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী ঘোষণা একটু পরেই শুনতে পাবেন।
1: নমস্কার, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालिफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने

आयरलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: এখন দিল্লি কেন্দ্রের সংস্কৃত, হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচিকা নিধিঃ ঝাঃ। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन त्रिंशदुत्तर द्विसहस्र वर्षं यावत् पञ्चार्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्। यदि सांप्रतिक व्यापारस्य पंच गुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननम् अपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोरेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निज सम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68+700 संवृत्ता। अद्यापि मृत वपुंसी संप्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पंचमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। अष्टसु अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 86+8,000 जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27,200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणाम् 80% स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशाराज्ये नूतनवृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तरक्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर, खेजर, मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा संचेतना

0: मुख्या पिता, तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिम अलीफ आदिलबेक अलीशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा पर। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा है कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकानों का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगलों में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू मुहरीज स्क्वैश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लिंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ ही शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये फैसला किया गया है। प्रतियोगिता में मेजबान श्रीलंका सहित 6 टीमें हिस्सा लेने वाली थीं। ICC बोर्ड की अगली बैठक में टूर्नामेंट के नए आयोजन स्थल के बारे में फैसला होने की संभावना है। आयोजन स्थल बदलने से श्रीलंका की टीम के इस टूर्नामेंट में खेलने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के UPI पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा UPI पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
4: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से

0: कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
3: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
4: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलंगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
5: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे

0: प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-2334-8101-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan.

9:11 है। छोड़ी की घड़ी का समय आकाशवाणी कोलकाता का संचित चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर तथा 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। शुरुआत करते हैं बातों और गीतों के कार्यक्रम रसधारा की, और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ। और फिर एक बार हम हाजिर हो चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर, जिसमें होती हैं कुछ बातें तो कुछ नगमों का सिलसिला चलता रहता है इसी कार्यक्रम में। और फिर एक बार एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, और आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके सुंदर सुंदर दो आंखों को लेकर। जी हाँ, वही नैन जिन पर आपको गर्व है, और आपके इन खूबसूरत नैनों को देखकर शायद कोई और घायल भी होता होगा। जी हाँ, आपके सुंदर नैनों की जो सुंदरता है उनमें किसी ने बहुत ज़्यादा डूब जाने की चाहत रखी होगी। तो चलिए, आपके सुंदर नैनों को लेकर होंगी बातें आज के इसी कार्यक्रम में। और भला आज के इस कार्यक्रम में नैनों को लेकर, आंखों को लेकर बातें क्यों होंगी, है ना, ये सवाल भी उठ सकता है आपके दिमाग में। तो सवाल ज़रूर उठाइए, बातें भी होंगी, जवाब भी मिलेगा आपको उसी सवाल का। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा तराना आप सभी श्रोताओं तक पहुंचाना चाहूंगी, जिसमें आवाज़ है गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की। CID फिल्म से लिया गया है इस गीत को, जिसमें बोल है जानेसा अख्तर की और ओपी नैयर के संगीत से सजाया गया था इस गाने को। तो चलिए इसी गीत के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, जिसका नाम है रसधारा, जो कि बातों और गीतों का कार्यक्रम होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की इस सुंदर से तराने के साथ।

जानिसार अख्तर के बोल आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और यही तो खूबसूरती है आंखों की, चाहे आप कितनी भी भीड़ में हो लेकिन आपकी आंखों का इशारा कोई और जरूर समझ लेता है। और इसी तरीके से आंखों ही आंखों में कई सारी बातें भी होती चली जाती हैं। तो ये सुंदर गीत आप सुन रहे थे, कार्यक्रम चल रहा है रसारा, जिसमें कुछ बातें और कुछ नगमों के साथ ये सिलसिला सज उठता है। और जैसे कि मैंने एक सवाल छोड़ा था आप सबके लिए कि आज के इस कार्यक्रम में आखिर आंखों को लेकर, नैनों को लेकर बात क्यों होने जा रही है, तो चलिए उसी सवाल का जवाब मैं देती चलती हूँ, क्योंकि आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो उन्हीं सुंदर आंखों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, और नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर हम बात करने वाले हैं। अब नेत्रदान ही क्यों, जी हाँ, इसके पीछे भी एक कारण है। आई डोनेशन फॉर्टनाइट के तौर पर इन दिनों मनाया जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक जागरूकता अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के बारे में शिक्षित करना और कॉर्निया दान एवं प्रत्यारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही इस दिन को मनाने के, माफ कीजिएगा, ये जो पखवाड़ा है इस पखवाड़े को मनाने के पीछे का असल मकसद है। तो इसी वजह से नेत्रदान पखवाड़ा इन दिनों मनाया जा रहा है। और ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपके उन्हीं सुंदर नैनों को लेकर, आंखों को लेकर आज के इस कार्यक्रम में बात की जाए। और नेत्रदान आखिर क्यों ज़रूरी है, नेत्रदान से जुड़ी बहुत सी बातें आज के इस कार्यक्रम में साझा करूंगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं पूरे 10 बजे तक। और इस कार्यक्रम में नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर बहुत सी बातें साझा करूंगी, लेकिन साथ ही साथ एक से बढ़कर एक गीतों को सुनना भी तो उतना ही ज़रूरी है ना। तो चलिए आशा भोंसले शमशाद बेगम की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा तराना आप सभी सुनने वालों तक पहुँचाने जा रही हूँ कार्यक्रम रसारा के माध्यम से।

आशा भोंसले और शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म किस्मत से सुन रहे थे आप इस बहुत ही प्यारे तराने को, जिसमें बोल थे एसएच बिहारी के और संगीत से सजाया था ओपी नैयर ने। फिर एक बार रुख करते हैं आज के विषय की ओर, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर, तो नेत्रदान क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। नेत्रदान एक महान और परोपकारी काम है जिसके माध्यम से मृत व्यक्ति की आंखें किसी नेत्रहीन व्यक्ति को नया जीवन और दृष्टि दे सकती है। नेत्रदान के प्रति जागरूकता से समाज में फैली जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए आगे आ सकते हैं। नेत्रदान से जुड़े महत्व की अगर बात करें तो कॉर्निया की खराबी के कारण दुनिया देख पाने में असमर्थ लोगों को नेत्रदान से कई एक नई दृष्टि मिल सकती है। इसके अलावा आंखें केवल जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि मृत्यु के बाद ही दान की जाती है और ये किसी के अंधेरे जीवन को रोशन करने का सबसे सफल और असरदार तरीका है। एक फिल्मी गीत की ओर रुख करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आंखों का आखिर कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है। रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर और फिलहाल मोहम्मद रफ़ी जो कि कह रहे हैं गुलाबी आंखों की बातें, तो चलिए गुलाबी आंखें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में

9:31 है स्टूडियो घड़ी का समय। आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर्स अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे ये प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं और इस वक्त आप हैं संगशर मिश्रा की और सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा, जिसमें नेत्रदान से जुड़ी बहुत सी बातें आज के इस कार्यक्रम में हम साझा कर रहे हैं। और मैं आपको बताने वाली थी कि आई डोनेशन के लिए आँख का कौन सा हिस्सा आखिर डोनेट किया जाता है, तो आई एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये पता चलता है कि बहुत से लोग मानते हैं कि नेत्रदान के दौरान उनकी पूरी आँख निकाल दी जाती है, जिससे आँख का जो सॉकेट है वो खाली रह जाता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है और आमतौर पर केवल कॉर्निया, जो कि आँख की सबसे बाहरी परत होती है, बहुत धीरे से निकाल ली जाती है और इस तरीके से कॉर्निया को जो है वो डोनेट किया जाता है। इसके अलावा आँखों के अन्य भाग जिन्हें डोनेट किया जा सकता है वो है कॉर्निया के अलावा पलकें डोनेट की जाती हैं, अश्रु नलिका यानी कि टियर डक्ट भी डोनेट किए जा सकते हैं और इसके अलावा एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी दान किया जाता है। तो ये तो कुछ हिस्से हैं आँखों के। जी हाँ, आपकी सुंदर आँखों के अंदर आखिर कितना कुछ छुपा हुआ है ये तो हमें अक्सर पता नहीं होता है, लेकिन जब इनके बारे में हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तब हमें पता चलता है कि आखिर हमारे सुंदर नैनों के पीछे कितना कुछ छुपा हुआ है जिनके माध्यम से हम सुंदर दुनिया को देख पाते हैं। तो ये कुछ हिस्से हैं आँखों के जिन्हें डोनेट किया जाता है। इसके अलावा जागरूकता के तौर पर आखिर किस तरीके से नेत्रदान से जुड़ी बातें हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन बातों और गीतों का कार्यक्रम है तो सिर्फ और सिर्फ बातें तो नहीं है ना, इसीलिए लता मंगेशकर की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा तराना सुन रहे हैं आप बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधार। और इस कार्यक्रम के माध्यम से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए

नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। और चलिए, जागरूकता आखिर किस तरीके से बढ़ाई जाए, तो इसी को लेकर बात करूंगी। जागरूकता बढ़ाने के कई सारे उपाय हैं, जिसमें सबसे पहले लोगों को सचेत कराया जा सकता है। और ये जो सचेत करना है, ये आखिर किस तरीके से होगा, तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या फिर शिविरों और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा सकता है कि ये जो नेत्रदान है ये कितना ज़रूरी है और बिना किसी डर के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा संकल्प पत्र भरकर भी नेत्रदान को लेकर जागरूकता फैलाई जा सकती है। जीवित रहते हुए नेत्रदान का संकल्प पत्र यानी कि प्लेज फॉर्म भरना और अपने परिवार को इसके बारे में बताकर जागरूकता फैलाई जा सकती है। इसके अलावा भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है, यानी कि लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई सारी चिंताएं दिमाग में घूमती रहती हैं कि आखिर ये सेफ है या नहीं। तो ये जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितनी भी गलत फहमियां हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। समाज से ये डर मिटाया जा सकता है कि नेत्रदान से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इससे जुड़े कुछ अच्छी बातें समझा कर भी लोगों के अंदर जो भी गलत फहमियाँ हैं इस विषय को लेकर, इसे दूर किया जा सकता है। अब अगला सवाल ये है कि नेत्रदान आखिर कौन कर सकता है, तो कौन कौन अपनी आँखों को डोनेट कर सकते हैं। तो आँखें तभी दान की जा सकती हैं जब डोनर को उनकी ज़रूरत न हो, यानी कि डोनर की मृत्यु के बाद। हम में से जो लोग हमारी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें जीवित रहते हुए उन्हें गिरवी रखने की ज़रूरत होती है। जब हम जीवित होते हैं तो उन्हें स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि रिसीवर हमारे बाद उनका अच्छे तरीके से उपयोग कर सके। अपनी आंखें गिरवी रखना एक नेक काम है, जी हाँ, और ये सुनिश्चित करता है कि आपके न रहने के बाद भी आपकी आंखें किसी और को दुनिया देखने में मदद कर रही हैं। नेत्रदान शायद सबसे बड़ा दान है और ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। मृत्यु के जी हाँ मृतक के नेत्रदान को परिजन

द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए, भले ही मृतक ने जीवित रहते हुए अपनी आंख गिरवी रखी हो। यहाँ तक कि अगर उसने मृत्यु से पहले अपनी आंख दान करने की प्रतिज्ञा नहीं की थी तो परिजन भी मृतक की आंखें दान करने की अनुमति दे सकते हैं। ये तो थी बात कि नेत्रदान आखिर कौन कर सकते हैं। रुख करते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेत्रदान आखिर कौन नहीं कर सकते। जी हाँ, अपनी आंखें आखिर कौन लोग नहीं दे सकते दूसरों को, इसके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत, फिर एक बार लता मंगेशकर की आवाज़ में।

9:50 होने को हैं। संगे आप शर्मिशा के और बातों और गीतों के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे नेत्रदान के प्रति जागरूकता को लेकर, और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस प्यारे से तराने को आप तक पहुंचाने से पहले बात कर रही थी उन लोगों को लेकर जो अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं। अब बताना चाहूँगी उन लोगों के बारे में जो अपनी आँखें दान नहीं कर सकते हैं। तो आई एक्सपर्ट्स की अगर माने, जी हाँ, आँखों के डॉक्टर के मुताबिक उनका कहना है कि वे व्यक्ति जिन्हें हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी या फिर किसी संचारी रोग जैसी बीमारियां हैं, वे अपनी आँखें दान नहीं कर सकते। इसके अलावा वे लोग भी अपनी आँखें दान नहीं कर सकते जिनकी मृत्यु डूबकर हुई है। इसके अलावा बाकी सारे व्यक्ति अपनी खूबसूरत आँखों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और ये मौका दे सकते हैं उन लोगों को जो अपनी दृष्टि से संसार को देखने में असमर्थ हैं, और आपकी आंखें उन्हें दोबारा मौका दे सकती है कि आपके आंखों के जरिए वे दुनिया को फिर से देख सके। तो ये तो थी आंखें, आखिर कौन डोनेट कर सकते हैं और कौन

नहीं डोनेट कर सकते। लेकिन इसके अलावा बॉलीवुड में आँखों के स्थान की अगर बात करें तो बॉलीवुड के गीत संगीत की दुनिया में आँखों को एक बहुत बड़ी जगह दी गई है। जी हाँ, बॉलीवुड में आँखों पर बने गाने भारतीय संस्कृति, रोमांस और भावनाओं की गहराई को दर्शाने का एक बहुत ही प्रमुख माध्यम माना गया है। भारतीय संस्कृति और शायरी में महिलाओं की सुंदर

शामिल किया गया है। आंखों पर गाने लिखे गए हैं, संगीत तैयार किया गया है और सुंदर आवाज के माध्यम से उन गानों को गाया गया है। तो चलिए इसी के साथ सुनवाऊं आपको एक और प्यारा सा गीत आवाज आशा भोंसले की।

कर सकते हैं, और करने से पहले पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और इसी के साथ बहुत सी जानकारी आज के इस विषय को लेकर साझा कर रही थी आपकी रेडियो दोस्त शर्मिशा, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम होता है समाप्त। लेकिन जाने से पहले किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सागर से एक बहुत ही प्यारा सा तराना आप सभी के लिए छोड़े जाना चाहती हूँ। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिशा को दीजिए इजाज़त आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। मिल रही हूँ बहुत जल्द, समय रहेगा ठीक 12 बजे का, लेकर आऊँगी दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। तब तक के लिए ट्यून रहिएगा इस चैनल के साथ और सुनते रहिए ये बहुत ही प्यारा सा तराना।

उमराव जान फिल्म से सुन रहे थे आप इस बहुत ही प्यारे से गीत को आशा भोंसले की आवाज़ में, और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को करना होगा समाप्त। रसारा कार्यक्रम में आज के दिन बात हो रही थी नेत्रदान से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें, जिनसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है और लोगों को ये मैसेज पहुँचाया जाए कि नेत्रदान जो है वो बहुत ही अच्छा कार्य है। अगर आप चाहें तो आप

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष

0: 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिसके चलते बरगढ़ के लिए रेड अलर्ट और पश्चिमी उड़ीसा के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते हुए देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा की। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliev Adilbek Elishovich, Chairman of the Cabinet of Ministers. Mr. Modi is visiting Kyrgyzstan at the invitation of President Sadir Zaparov for 26th SCO Summit. On the first day of his visit to Kyrgyzstan, PM Modi will hold bilateral meetings with SCO leaders on the sidelines of the summit. Mr. Modi will address the SCO summit tomorrow. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will first interact with the Friends of India in Bishkek today. He will then visit the Mahatma Gandhi Memorial Park and pay floral tributes at the statue of Mahatma Gandhi. The statue was unveiled by Mr. Modi during his visit to Kyrgyzstan in the year 2015. The Prime Minister will also hold bilateral meetings with the several leaders of SCO member countries today. These include meetings with the presidents of Armenia, Kyrgyzstan and Iran, as well as a bilateral meeting with the President of Russia. Mr. Modi will also attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games today. The event celebrates the rich and vibrant

और दिलकश नगमे। फिर ताखिर कैसी आगाज इस खूबसूरत शेर के साथ, बिखर गए तो संवरने का हुनर जानते हैं, जो डूब जाएं उभरने का हुनर जानते हैं, बिखर गए तो संवरने का हुनर जानते हैं, जो डूब जाएं उभरने का हुनर जानते हैं, बचाए रखिए ज़रा हमसे नज़र, वरना हम नज़र से दिल में उतरने का हुनर जानते हैं। दोस्तों, काश ये रास्ता इतना आसान होता, ताहम लगे रहिए कभी ना कभी मंजिल मिल ही जाएगी। फ़िलहाल शुरुआत आईने से, अर्ज़ किया है, ना सो सका हूँ ना शब जाग कर गुजारी है, ना सो सका हूँ ना शब जाग कर गुजारी है, अजीब दिन है सुकून है ना बेकरारी है। दोस्तों, बेकरार दिल की करारी के लिए रुख करते हैं मौजू का। मौजू सामिन, जो लोग तालीम मुकम्मल करके सरकारी मुलाजमत की उम्मीद में उम्र गुजार देते हैं, आज का मौजू उनके लिए ख़ास है। सीखो और कमाओ, एक ऐसी सरकारी स्कीम है जिसकी मदद से आप अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग दे सकते हैं। इसलिए सरकारी मुलाजमत की कैद से बाहर आएँ और मुकम्मल आसमान आपके सामने है। दोस्तों, अक़लियती उमूर की वज़रात ने अक़लियती ज़ुमरों से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए हुनरमंदी के तरक्की की स्कीम शुरू की है। 2013-14 में सीखो और कमाओ स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम का मकसद हिंदुस्तान में अक़लियती नौजवानों को हुनरमंदी फराहम करना है। ये नौजवान अपनी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं और इस तरबियत की मदद से इन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन मौका मिल सकता है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। इसलिए समंदर बनकर दरिया को अपने में समेट लेने की कोशिश करें। सीखो और कमाओ स्कीम का मकसद अक़लियती नौजवानों की अहलियत, मौजूदा मुआशी रहजानात और मार्केट की सलाहियत के लिहाज से मुख्तलिफ जदीद रवायती हुनर में महारतों को अपग्रेड करना है, जिससे वो मुनासिब रोज़गार हासिल कर सकते हैं या इन्हें खुद रोज़गार के लिए हुनरमंद बनाया जा सकेगा। अक़लियती नौजवान जैसे मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी और जैन तबका के नौजवानों को रोज़गार के बेहतरीन मौके मिले और साथ ही मार्केट में शामिल हो सके, अपनी सकाफत और रवायत के मुताबिक अपनी सलाहियतों को बढ़ा सके और अपने रोशन मुस्तकबल की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ करें और मुल्क के लिए मजबूत इंसानी वसाइल पैदा कर सकें। जहाँ तक अहलियत के का ताल्लुक है, तो 14 से 45 साल तक के अक़लियती नौजवानों को मुफ्त तरबियत दी जाती है। जी हाँ, मुफ्त। मज़ीद जानकारी के लिए आप सरकारी वेबसाइट से रुजू कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का वो आईना जिसे आप रूबरू हुए। स्टूडियो की घड़ी कह रही है 10:20 और आप सुन रहे हैं अपना महबूब प्रोग्राम अंजुमन चैनल संचयता पर सरफराज के साथ। कहते हैं, मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे जमाने वाले। मेरे हाथों की लकीरों में समाने वाले, कैसे छीनेंगे तुझे मुझसे जमाने वाले। धड़कने और भी बढ़ जाएंगी तेरे दिल की, मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक खूबसूरत नगमे का, आशा भोसले और साथियों की दिलकश आवाज़ में साहिर लुधियानवी का कलाम। मौसीकी रोशन की है और फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

दोस्तों महबूब के का दीदार जो है वो खुद से एक कह लीजिए कि वो ईद से कम नहीं है। इसलिए जो लोग सिर्फ ईद के चांद की बात करते हैं तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सच्चे आशिक से कुछ सबक लें। कहते हैं कि हर कोई मोहब्बत में फना नहीं होता, किसी को चाहना कोई गुनाह नहीं होता। वो चूसते हैं, वो पूछते हैं कि कितना चाहते हो मुझे, वो पागल क्या जाने प्यार लफ्ज़ों में बयान नहीं होता। दोस्तों नगमों का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फ़िलहाल वक्त हो चला है आज के खसूसी पेशकश का। दोस्तों आज हम आपके समातों के नज़र करेंगे एक ऐसी चंद ऐसी बातें जिनका जिक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 137वीं किस्त में किया। ये सारी बातें क्यों अहम हैं, आइए इन पर रोशनी डालते हैं। मौजूद सामीन, 30 अगस्त 2026 को मन की बात की 137वीं किस्त पेश की गई। अपनी तमाम तर मसरूफियत के बावजूद हर माह समाज के हर एक तबका के लोगों से बातचीत करना और महज चंद लम्हों में समंदर को कूजे में समाने की कामयाब कोशिश करते हैं आप। इस बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 137वीं किस्त में ख़ास तौर पर नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और नशे से निजात के लिए समाजी शिरकत पर जोर दिया। मौजूद सामीन, मन की बात सिर्फ वज़ीर आज़म का खिताब नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जुड़ी कहानियों, कामयाबियों, काविशों और अवामी शिरकत को वाज़े करने का एक अहम ज़रिया बन चुका है। आज के खिताब का एक अहम पैगाम हमारे नौजवानों के लिए सेहतमंद, महफूज और रोशन मुस्तकबल था। वज़ीर आज़म में समाज में मंशियात के बढ़ते हुए मसले के बारे में शऊर उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इन्होंने वाज़े किया कि मंशियात के लत के ख़िलाफ़ जंग सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ख़ानदान, स्कूल, समाज और नौजवान तंजीमें और हर शहरी इस मामले में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने अपनी फाजिलाना खिताब में कहा कि मंशियात की लत का असर सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं है, यह पूरा ख़ानदान और माशरे को मुतासिर करता है। इसलिए नौजवानों को खेल और तालीम, हुनर, तख्लीकी सरगर्मियों और कौम की तामीर में मशगूल करते हुए इन्हें मुस्बित सम्त फराहम करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम वाज़ेह है कि आज का नौजवान जिस कदर बाशऊर, सेहतमंद और खुद एतमाद होगा, मुल्क का मुस्तकबल उसी कदर मुस्तहकम होगा। जी हाँ, इसलिए यह हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारियाँ हैं कि माशरे में शऊर को फ़रोग दिया जाए, नौजवानों से राबता करने पर जोर दिया जाए और साथ ही इन्हें दुरुस्त मौका फराहम करने की बात कही जाए। मौजूद सामईन, मन की बात की खासियत यह है कि मुल्क के तमाम शहरियों की छोटी छोटी कोशिशें भी कौमी बहस का हिस्सा बन जाती हैं। कहीं कोई नौजवान कोई नई पहल कर रहा है, कहीं किसान नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, कहीं ख्वातीन खुद इन्हसारी की नई मिसाल कायम कर रही हैं और कहीं मुकामी माशरा समाजी तब्दीली लाने के लिए यकजा हो रहा है। ऐसी काविशें एक ताकतवर पैगाम पेश करती हैं। जब किसी काम में शहरी हिस्सा लेते हैं तो छोटी कोशिशें भी बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाती है। मन की बात के ज़रिया हमें ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द के नौजवानों को मुस्बित सरगर्मियों में शामिल करने, इनकी हौसला अफजाई करने और मंशियात से पाक और सेहतमंद माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करने का अहद करना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत कौम की तामीर सिर्फ बड़े मंसूबों पर नहीं होती। अपने मन की बात खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर मगरबी बंगाल के सकाफ़ती वर्से और बंगाली सिनेमा

के लेजेंड उत्तम कुमार को खुसूसी तौर पर याद किया। वजीर आजम ने कोलकाता में अपने रोड शो को याद करते हुए कहा कि जब इनका काफिला लेजेंड अदाकार के घर के सामने से गुजरा तो तकरीब के दौरान एक शख्स ने इन्हें उत्तम कुमार की एक तस्वीर पेश की थी और साथ ही कहा कि वो हमेशा लोगों के दिलों में राज करेंगे। उत्तम कुमार के बारे में वजीर आजम ने कहा कि वो सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि वो बंगाली सकाफत की पहचान थे। इनके अदाकारी ने नस्ल दर नस्ल अपने नाजरीन पर गहरे नकूश छोड़े हैं। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने उत्तम कुमार से मुतालिक अपनी बेपनाह एहतराम का इजहार किया, साथ ही बंगला जबान में इन्हें खिराज अकीदत भी पेश किया। अजीम फनकार उत्तम कुमार हमेशा लोगों के दिलों में राज करेंगे, ये अल्फाज सिर्फ एक फनकार को खिराज अकीदत नहीं बल्कि अजीम सकाफती रवायत को तस्लीम करना भी है। उत्तम कुमार को याद करते हुए वज़ीर आज़म का यह तस्करा यकीनन बंगाल के फ़न से मोहब्बत करने वाले और इनके लाखों मद्दाहों के लिए एक ख़ास जज्बाती लम्हा है। उत्तम कुमार बंगाली सिनेमा का एक रोशन सितारा, एक अहद और एक लाफानी शख्सियत का नाम है। इसी के साथ इन्होंने दस्तकारी, एवोकाडो फल और इनके अफादियत और इससे होने वाले फ़वाद का भी ख़ास तौर पर जिक्र किया। साथ ही खातिन के ज़रिए बनाया गया सैटेलाइट के बारे में भी इन्होंने कहा। 4 सितंबर को जन्माष्टमी, फिर दिवाली के बारे में भी इन्होंने अपनी राय का इजहार किया और वोकल फॉर लोकल की बात कही। दोस्तों, ये था वो खुलासा जिसे आप मन की बात की 137वीं किस्म में समाप्त फरमाया। और अब सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म पगला कहीं का बोल हसरत जयपुरी के मौसिकी शंकर जयकिशन के।

दोस्तों, प्यार तो एक इबादत है, इसे ना तो भुलाया जा सकता है और ना मिटाया। कहते हैं कि मेरी आंखों से तेरी याद का साया नहीं जाता, मैं क्या करूं तुझको भुलाया नहीं जाता। मेरी आंखों से तेरी याद का साया नहीं जाता, मैं क्या करूं तुझको भुलाया नहीं जाता। एक मुद्दत से लिखा है तेरा नाम अपने दिल पर, मैं क्या करूं मुझसे मिटाया नहीं जाता। दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:39:06 हो रहे हैं और अब बारी है मंजरनामे का। आज के मंजरनामे में आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम बराए अकलियत समाप्त फरमाएंगे। दोस्तों, भारत में अकलियती बरादरी यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी के लिए हुकूमत के वजारत अकलियती उमूर के तहत कौमी अकलियती तरक्की और मालियाती कॉरपोरेशन और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतें मुतअद्दिद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने खुद रोज़गार स्कीमें चलाती हैं। इन स्कीमों का बुनियादी मकसद अकलियती नौजवान और ख्वातीन को अपना कारोबार शुरू करने या इसके फ़रोग के लिए सस्ते कर्ज और रियायत फराहम करना है। अहम स्कीमों की बात करें तो इसकी तफसील कुछ यूं देखने में आती है कि नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फिनांस कॉरपोरेशन की स्कीमें कुछ इस तरह हैं कि टर्म लोन स्कीम, छोटे कारोबारी मिसलन दस्तकारी, ज़राअत या ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करने के लिए साजो सामान और वर्किंग कैपिटल के लिए छोटे कर्जे फराहम किए जाते हैं। माइक्रो फिनांस, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मुंसलिक ख्वातीन और गरीब अफराद को छोटे कर्जे दिए जाते हैं। पीएम विकास स्कीम, इस स्कीम का मकसद अकलियती कारीगरों और नौजवानों को हुनरमंदी, मार्केट लिंक और खुद रोज़गार के मौके फराहम करते हैं। अकलियती सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सब्सिडी स्कीम, अकलियती ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अपना कारोबार कायम करने के लिए बैंक लोन पर भारी सब्सिडी दी जाती है। अहलियत की बातें करें तो दरख्वास्त गुजार की उम्र 18 से 55 साल होनी चाहिए और ख़ानदानी सालाना आमदनी तयशुदा हद यानी आमतौर पर 6 लाख से रुपए तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। इसके लिए आप सरकारी वेबसाइट से तफसीलात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, करने वाले बहुत कुछ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी मुलाजमत के चक्कर में अपनी उम्र गुजार दें। इसलिए आप खुद अपनी दुनिया जो है अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। कैसे? खुद रोज़गार स्कीम के तहत। आप पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा भी, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी इस सूरत में भी आप रोज़गार के लिए जो है हुकूमत आपको कर्ज देगी।

खत्म होती है। अलसी का तेल जिसमें फालतू चर्बी बनने के अमल को रोकता है। अलसी का तेल दिल के शरियानों को सेहतमंद रखता है। अलसी के बीज और इसके तेल के तिब्बी फवायद के मुतालिक मजीद मालूमात किसी भी गिजाई माहिर से आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको जो है जानने की ज़रूरत है। अलसी के बीजों के साथ साथ इसके तेल से भी बहुत से तिब्बी फ़ायदे हैं, ये भी जानने की ज़रूरत है। दोस्तों अभी आप तख्लीक कुदरत के तहत अलसी के फवायद समात फरमा रहे थे। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:57:56 हो रहे हैं और आप सुन रहे थे चैनल संचैता पर उर्दू प्रोग्राम अंजुमन सरफराज के साथ। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:58 हो चुके हैं। दोस्तों कहते हैं कि अब आपसे अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। पलकों को झुका कर सलाम करते हैं, दिल की दुआ आपके नाम करते हैं। खुदा ना करे आपको कभी गम मिले, हम अपनी हर खुशी आप पर कुर्बान करते हैं। दोस्तों बहुत खुश रहिए और शाद रहिए और इन्हीं बातों के साथ अपने मेज़बान सरफराज को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी आइंदा किसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुबह खैर।

Next up is New York Minutes by Eagle. Enjoy.

Music videos on the Wikis and the Netflix.

चूड़ी की घड़ी में बज चुके हैं ठीक 12। आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। शुरू करते हैं दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि, और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिशा के साथ। और सुरभि कार्यक्रम के पहले पायदान की ओर रुख करते हैं जिसका नाम है चर्चा है।

चर्चा है में आज का हमारा विषय है आई डोनेशन फॉर्टनाइट। भारत में राष्ट्रीय नेत्र पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक जागरूकता अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के बारे में शिक्षित करना और कॉर्निया दान एवं प्रत्यारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये पखवाड़ा आम गलतफहमियों को दूर करने का भी एक अवसर है। कई लोग नेत्रदान का समर्थन करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वे इसके लिए पात्र हैं भी या नहीं। मृत्यु के बाद उनके परिवार को क्या करना होगा या फिर क्या नेत्रदान से पारंपरिक अंतिम संस्कार में कोई बाधा आती भी है या नहीं। नेत्रदान आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। कॉर्निया से संबंधित कुछ प्रकार के अंधेपन से पीड़ित लोगों के लिए एक स्वस्थ दानित कॉर्निया उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। कॉर्निया आंख की पारदर्शी सामने की सतह होती है और आने वाले प्रकाश को केंद्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। जब कॉर्निया गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या फिर धुंधली हो जाती है तो दृष्टि काफी प्रभावित हो सकती है। कारण और रोगी की स्थिति के आधार पर नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा कॉर्निया

प्रत्यारोपण पर विचार किया जा सकता है। इसीलिए दान किए गए कॉर्नियल उत्तक की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। सरकारी स्वास्थ्य सूचना में नेत्रदान को कॉर्नियल अंधत्व से निपटने और दृष्टि बहाल करने वाले प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के प्रयासों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उजागर किया गया है। दृष्टि में कॉर्निया की भूमिका के बारे में अगर बात करें तो कॉर्निया आंख के सामने की पारदर्शी बाहरी परत होती है। ये प्रकाश को अंदर आने देती है और आंख की फोकस करने की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि कॉर्निया में गंभीर निशान, रोग या फिर अन्य क्षति हो जाती है तो प्रकाश सामान्य रूप से उससे होकर नहीं गुजर पाता और इसके परिणाम स्वरूप दृष्टि धुंधली हो सकती है या फिर काफी कम हो सकती है। कुछ चुनिंदा रोगियों में कॉर्निया प्रत्यारोपण में क्षतिग्रस्त कॉर्निया उत्तक को उपयुक्त दाता उत्तक से बदल दिया जाता है और प्रत्यारोपण का सटीक प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि कॉर्निया का कौन सा भाग प्रभावित हो चुका है और रोगी की आंखों की स्थिति आखिर कैसी है। कॉर्निया को प्रभावित करने वाली स्थितियों के कई कारण हो सकते हैं। कुछ रोगियों में चोट या फिर संक्रमण के बाद कॉर्निया पर निशान पड़ सकते हैं, जबकि अन्य में वंशानुगत या फिर किसी और कारण से भी विकार हो सकते हैं। हर दृष्टिबाधित व्यक्ति को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं होती। उपचार की सलाह देने से पहले नेत्र रोग विशेषज्ञ को आंख की जांच करके दृष्टि हानि के जो अंतर्निहित कारण का पता जरूर से लगाना होता है। और आई डोनेशन फॉर्टनाइट के इतिहास को लेकर अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा की शुरुआत वर्ष 1985 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसे इसी कारण से शुरू किया गया था कि इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ रहे कॉर्नियल अंधेपन की समस्या से निपटना और लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना था। गतिविधियों की अगर बात करें तो इन दो हफ्तों के दौरान विभिन्न अस्पताल, गैर सरकारी संगठन और शैक्षणिक संस्थान शिविर लगातार लोगों को नेत्रदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोगों के मन से नेत्रदान से जुड़े अंधविश्वासों और मिथकों को दूर करना तथा कॉर्निया प्रत्यारोपण के महत्व को समझाना है। चर्चा है आज यहीं तक। आज का हमारा विषय था आई डोनेशन फॉर्टनाइट। रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर।

12:12 है चूड़ी घड़ी का समय और सुरभि कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अगले पायदान की ओर रुख करते हैं और अगला पायदान जिसे नाम दिया गया पहल में आज का हमारा विषय है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी

भी पहल है जिसका उद्देश्य शारीरिक फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में की थी। मुख्य उद्देश्य यही था कि फिटनेस को हर नागरिक के दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बनाया जा सके, लोगों को शारीरिक गतिविधियों और खेलों के प्रति जागरूक किया जा सके, इसके अलावा मोटापा और जीवन शैली से जुड़ी अन्य बीमारियों से मुकाबला भी किया जा सके। इस पहल से जुड़ी कुछ विशेषताएं भी जुड़ी हुई हैं जिसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। स्कूली भागीदारी की अगर बात करें तो स्कूलों और कॉलेजों में फिटनेस सत्रों और खेल गतिविधियों को अनिवार्य किया गया। इसके अलावा सामुदायिक कार्यक्रम के तौर पर इस पहल को शुरू किया गया। स्वस्थ आदतें, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और योग व्यायाम के लिए विशेष शिविर और अभियान चलाए गए। आधिकारिक पोर्टल की अगर बात करें तो नागरिक अपनी फिटनेस कहानियों और जानकारियों को फिट भारत अभियान के मंच पर भी साझा कर सकते हैं। पहल आज यहीं तक, बात कर रहे थे फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर। सुरभि कार्यक्रम में रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर। अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में सुनिएगा इस गीत को, जो कि कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत होगा। इस गीत को सुनते सुनते शर्मिष्ठा को दीजिए इजाजत आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। फिर एक बार कल इसी जगह इसी चैनल पर दोबारा आपसे बात होगी और सुरभि कार्यक्रम में लेकर आऊंगी एक नया विषय जिससे जुड़ी बहुत सी बातें आप सभी श्रोताओं के साथ साझा करूंगी। तब तक के लिए क्यों रहिएगा चैनल संचिता के साथ और सुनते रहिए सुरभि कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत। सुन रहे थे आप इस कार्यक्रम को आपकी रेडियो दोस्त शर्मिष्ठा के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले चार प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज़्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज़्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल

खराब वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

one does. Hear me, sweet.

0: Scheduled to begin at 8 p.m. Indian Standard Time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all six pillars of Semicon India Program 2.0 with a total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people are still missing. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुकुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
3: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो। सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
1: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है।

0: उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
1: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
3: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्य से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
3: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
5: We are living today.
4: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए

0: लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटांग में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर-20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर-20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331048 और 2371711।

0: साथ अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটারে অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে আজ শুনবেন আড়া চৌতালে তবলা, শিল্পী সুব্রত মান্না।

0: আকাশবাণী কলকাতা, অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটারে অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টসে। শুরু হল সঞ্চয়িতার দ্বিতীয় অধিবেশন। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন 4:59 হয়ে 51 সেকেন্ড। একটু পরেই খবর শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। दो दिन के किर्गिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठकों में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की भी समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक

0: ने फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्राकृतिक संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग स्पोर्ट पोत आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि आईएनएस निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 903 हो गई है। 4,247 लोग अभी भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारतीय बचाव दल चिली में लांगटांग में पानी संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगाई मैदान वाले इलाके, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तक आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting today with the President of the Islamic Republic of Iran, Dr. Masoud Pezeshkian, on the sidelines of the SCO summit in Bishkek. The two leaders discussed bilateral ties. They also discussed the recent developments in the West Asia conflict and shared perspectives on the evolving situation. Prime Minister expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Later, the Prime Minister also met President of the Kyrgyz Republic, Sadr Zaporov today. The two leaders reviewed the progress made in bilateral relations and reaffirmed their commitment to further strengthening the strategic partnership between India and the Kyrgyz Republic. Earlier in the day, Prime Minister Modi met PM of Armenia.

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:21 और 28 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। कार्यक्रम उर्वशी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोमवार की शाम आप सभी के लिए प्रस्तुत है झरोखा। झरोखे की साथ हम कौन सी धुन आज सुनेंगे या किस तरह की बातें होंगी, किस विषय पर बातें होंगी, जानने के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का पहला तराना।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मधुश्री की आवाज में कान्हा सो जा जरा। फिल्म का नाम था बाहुबली 2। और दोस्तों आपको बता दें कि कान्हा या कृष्ण जो हैं वो हमारे भारतीय, एक तरह से भारतीय सभ्यता का एक ऐसा प्रतीक हैं जिसमें प्रेम की पूरी तरह से हम प्रेम को अगाध रूप में देख सकते हैं। और जब कृष्ण की बात छिड़ती है तो मथुरा, वृंदावन, इन सभी जगहों की भी बात छिड़ती है। तो दोस्तों आप सोच होंगे कि आज के कार्यक्रम उर्वशी के झरोखे में हम क्यों बात कर रहे हैं इन सब विषयों पर। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज उर्वशी के अंतर्गत झरोखा कार्यक्रम में हमारा जो विषय है वो है रासिया, जो कि मथुरा और वृंदावन से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम उर्वशी के झरोखा के अंतर्गत बातें करते हैं किसी विशेष संगीत के, लोक संगीत के विषय में। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये जो राशिया है ये है क्या। दोस्तों जब बात छिड़ती है कृष्ण की तो ब्रजभूमि का नाम सबसे पहले आता है। और ब्रजभूमि सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा भाव है जो हमारी संस्कृति से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रेम, भक्ति, संगीत और लोक जीवन एक दूसरे से पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। जहां यमुना की लहरें कृष्ण की स्मृतियां सुनाती हैं और वृंदावन की गलियों में आज भी राधा कृष्ण के नाम को गूंजते हुए हम सुन सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए बरसाने की तो बरसाने के होली रंगों के साथ गीतों की बरसात भी करती है और वहीं से जन्म लेता है अद्भुत लोक संगीत जो कि रासिया कहलाता है। दोस्तों रासिया शब्द रास से जुड़ा हुआ है और आज हमारी इस यात्रा में मथुरा, वृंदावन, बरसाना और समूचे ब्रज की उस संगीत परंपरा की ओर हम चलेंगे जहां हमारा मन कह उठता है, गूंज उठता है या यूं कह सकते हैं गुनगुना उठता है रासियों को। दोस्तों उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है और मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव जैसे स्थान भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। जहां की संस्कृति में धर्म और लोक जीवन अलग अलग नहीं है। यहाँ मंदिर की घंटी भी संगीत की तरह बजती है, यमुना का प्रवाह भी संगीत की तरह सुनाई देता है और मोर की आवाज भी संगीतमय लगती है। और आपको बता दें कि आज हम बातें करने जा रहे हैं इसी ब्रजभूमि से जुड़े हुए, या यूं ही कह सकते हैं कि इसी भूमि से जुड़े हुए राधा कृष्ण से जुड़े हुए विशेष लोक संगीत यानी रासिया के विषय में। दोस्तों ब्रज की बोली ब्रज भाषा है और ये अपने आप में बेहद मधुर और मीठी है। इसी ब्रज भाषा में कृष्ण और राधा के प्रेम की लीलाओं, हंसी मजाक, विरह और मिलन के लोक गीतों के रूप में अभिव्यक्ति मिलती है और इन्हीं लोक गीतों की एक लोकप्रिय शैली कहलाती है रासिया। दोस्तों फिलहाल आप सभी इस धुन को सुन के समझ गए होंगे कि अगला गीत कौन सा है। तो आप सभी के लिए पेश है आज के कार्य

कार्यक्रम का ये अगला तराना, इस तराने को आप सुनेंगे 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता के संजीदा चैनल पर सुखविंदर सिंह के साथ इस्माइल दरबार और आयशा की आवाज में। आइए सुनते हैं फिल्म किसना से ये गीत।

वो किसना है, आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह के साथ इस्माइल दरबार और आयशा की आवाज़ में फिल्म का नाम था किसना। तो दोस्तों इस फिल्म से टाइटल ट्रैक आपने सुना 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर, जहां पर कार्यक्रम जारी है जिसका नाम है जी हाँ उर्वशी। और साथ ही आपको बता दें उर्वशी के अंतर्गत आज हम बातें कर रही हैं झरोखा में रासिया की। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि आखिर रासिया होता क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें रासिया ब्रज क्षेत्र की लोक गायन परंपरा के रूप में जाना जाता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है लोक जीवन से सीधा जुड़ाव। रासिया में प्रेम है, श्रृंगार है, हास्य है, संवाद है, कृष्ण लीला है और उत्सव की उमंग भी है। ये गीत केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि गाँव के चौपालों में, मेलों में, उत्सवों में और विशेष रूप से होली के अवसर पर रासिया जो है वो सुनाई देती है। दोस्तों आपको बता दें कि रासिया की प्रस्तुति में अक्सर गायक मंडली होते हैं और वाद्य यंत्रों में ढोलक, नगाड़ा, मजीरा और साथ ही साथ झांज और अन्य जो लोक वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें बजाया जाता है और पूरे वातावरण को ये संगीत बना देता है जीवंत। दोस्तों आपको बता दें कि रासिया जो है वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है और ब्रज की लोक संस्कृति की कल्पना कृष्ण के बिना करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह कृष्ण जो है वो यहाँ पर देवता के रूप में नहीं है, वो हैं हम सभी के नंदलाल माखनचूर बांके बिहारी कन्हैया। तो दोस्तों आज जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऐसे ही तराने सुनेंगे जो रासिया से जुड़े हैं।

दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बातें कर रहे हैं झरोखा के अंतर्गत, उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम के विषय में तो बातें होनी ही हैं और आपको संगीत भी ऐसा ही सुनाया जाएगा। तो दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम के विषय में अगर बात होती है तो राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ब्रज के लोकगीतों में ये प्रेम कभी मिलन कभी विरह बनकर आता है। तो राधा और कृष्ण के रूठने मनाने का जिक्र भी हमें सुनने को मिलता है। कृष्ण उन्हें मनाना चाहते हैं और साथ ही सखियां भी उनका साथ देती हैं। प्रेम में मीठी नोकझोंक भी सुनाई देती है और कहीं अगाध प्रेम भी हमें रासिया में देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि राधा कृष्ण के प्रेम को केवल सांसारिक प्रेम के रूप में देखना ब्रज की आध्यात्मिक परंपरा को अधूरा समझना होगा। भक्ति परंपरा में ये प्रेम जीव और परमात्मा के संबंध का भी प्रतीक माना गया है और इसीलिए ब्रज की रासिया मनोरंजन के साथ साथ भक्ति का माध्यम भी बन जाती है।

की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा। सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर

दोस्तों, रासिया के विषय में बात करते करते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:53, यानी कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में विदा लेते हुए आप सभी के लिए अगला गीत भी एक छोटे से रूप में, झलकी के रूप में, और साथ ही ये बात भी रहेगी कि रासिया और ब्रज की जो होली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मथुरा और वृंदावन जो है बरसाने के रूप में भी जाना जाता है, और यहाँ पर नंदगांव की होली अपने आप में बेहद अलग पहचान रखती है। यहाँ के रंग केवल चेहरे पर नहीं बल्कि रंग गीतों में, संगीत में, हंसी में और सबसे ज्यादा दिल पर चढ़ता है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, देविका लेती है आपसे इजाजत। गुड नाइट।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोफ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी

0: पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम और सीरिया के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today held bilateral talks with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during their meeting discussed various aspects of bilateral ties. They reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Prime Minister Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Prime Minister Modi and President of Kyrgyz Republic Sardor Zaparov reviewed the progress in bilateral relations and reaffirmed their commitment to further strengthening the strategic partnership between the two countries. Prime Minister Modi and his Armenian counterpart Pashinyan during the talks discussed ways to further strengthen bilateral cooperation across various areas, including defense, economic, pharma, science and technology, culture and education. Tomorrow, on the second and the final day of his visit to Kyrgyzstan,

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:10 और 40 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी का ये जो कार्यक्रम है, ये आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। दोस्तों, शुरू हो रहा है वार्ता, और वार्ता के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के विकास में वनवासियों की भूमिका के विषय में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो केवल जंगलों, पेड़ों और वन्य जीवों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, हमारी संस्कृति और हमारे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में वनवासियों की जो भूमिका है, उससे हम इस तरह से

समझ सकते हैं कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारे सामने हरे भरे जंगल, नदियां, पहाड़, वन्य जीव और स्वच्छ हवा की तस्वीर भी उभरती है, लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों में उनकी रक्षा करने वाले और उनके साथ जुड़े हुए उन लोगों को हम अक्सर भूल जाते हैं जिनका जीवन सदियों से जंगल के साथ जुड़ा हुआ है। वनवासी केवल जंगलों के आसपास रहने वाले लोग नहीं हैं, उनके लिए जंगल घर है, आजीविका है, संस्कृति है, परंपरा है और जीवन का आधार भी है। वन और वनवासी एक गहरा रिश्ता रखते हैं। भारत की जैव विविधता एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा जो है वो उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां विभिन्न वनवासी और आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से रहते आए हैं। उनका जंगल के साथ जो रिश्ता है वो केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक है और साथ ही संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। जंगल उनके लिए केवल लकड़ी का स्रोत नहीं बल्कि उनके लिए जंगल है फल, फूल, औषधीय पौधे, शहद, बांस, पत्ते, बीज और अनेक लघु वनोपज प्राप्त करने की एक कुंजी के रूप में। कई समुदाय जंगल को पवित्र मानते हैं। उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और वन्य जीवों का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि उनकी परंपरा जीवन शैली में प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की सोच दिखाई देती है। प्रकृति से सीखती जीवन शैली वनवासी समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी देती है और ये संदेश है प्रकृति से उतना ही लें जितनी की आवश्यकता हो। प्रकृति को वापस देने की जिम्मेदारी भी हमें ही निभानी है। कई समुदायों में पारंपरिक रूप से ऐसी मान्यताएं रही हैं जो कि पेड़ों की काटने को वो निषिद्ध मानते हैं, मतलब पेड़ों का जो कटाव है उनको पूरी तरह से उन समुदायों ने निषेध किया हुआ है। साथ ही कुछ जंगलों को पवित्र वन के रूप में संरक्षित भी किया जाता है। स्थानीय स्तर पर जल स्रोतों की देखभाल, पारंपरिक बीजों का संरक्षण और वनस्पतियों की पहचान जैसी अनेक पारंपरिक जानकारियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही हैं। यही ज्ञान आधुनिक पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है, उपयोगी माना जाता है, क्योंकि जैव विविधता के संरक्षण में योगदान भारत के योगदान में भारत दुनिया का सबसे अधिक जैव विविधता वाले देशों में माना जाता है। दोस्तों, जंगलों में हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी, कीट और वन्य जीव भी पाए जाते हैं और इसका संरक्षण केवल सरकार या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती बल्कि ये स्थानीय समुदायों की भागीदारी के लिए भी के साथ भी बहुत ही खूबसूरती से इसे बैलेंस किया जाता है। वनवासी समुदाय अपने आसपास के पेड़ पौधों और वन्य जीवों की जानकारी रखते हैं और उन्हें पता होता है कि कौन सा पौधा औषधीय है, कौन सा पौधा जो है वो किस प्रकार का फल किस मौसम में देता है और कौन से क्षेत्र जल स्रोत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ ही जंगल में प्राकृतिक बदलाव किस दशा में हो रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इस स्थानीय ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान के साथ जोड़कर अगर जैव विविधता संरक्षण को और भी प्रभावी बनाया जाए तो हमारा जो पर्यावरण है वो और भी मजबूत बन सकता है। बात रही जल संरक्षण की तो वन और जल का संबंध हमारे साथ बहुत ज़्यादा गहरा है। जंगल वर्षा के पानी को जमीन तक पहुँचाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जल चक्र को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनवासी समुदाय जो है ये परंपरागत रूप से स्थानीय जल स्रोतों के साथ जीवन जीने और अनेक प्रणालियों को विकसित करने की जो पहल है करते हैं। साथ ही तालाब, झरने, छोटी नदियां और पारंपरिक जल स्रोत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है।
आज जब जल संकट पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन रहा है।

तब स्थानीय समुदाय के पारंपरिक जल संरक्षण ज्ञान को समझना और उनका सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सतत विकास की अगर बात की जाए तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि विकास जो आज की ज़रूरत को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरत और प्राकृतिक संसाधनों से समझौता न करे, वो ही सतत विकास कहलाता है। तो अगर हम विकास के नाम पर जंगलों को लगातार नष्ट करते जाएंगे, नदियों को प्रदूषित करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करेंगे और विकास लंबे समय तक जो है वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, वास्तविक विकास वही होता है जहां पर अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण सभी एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखें और समुदाय जो वनवासी समुदाय जो हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकती हैं।

2001 के कटाव से जलवायु परिवर्तन, वनवासी समुदाय जो है वो उनका कम हो जाना और कहीं ना कहीं हमारे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं इस वन कटाव का ही एक प्रभाव है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, जंगलों में बदलाव जो है ये सभी उन समुदायों पर अधिक प्रभाव डाल सकते हैं जिनकी आजीविका सीधे प्रकृति पर निर्भर करती है। लेकिन ये समुदाय जलवायु परिवर्तन से निपटने में समाधान का हिस्सा भी बन सकते हैं। जंगलों का संरक्षण, स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण, मिट्टी और जल संरक्षण तथा टिकाऊ और कृषि जैसी गतिविधियां जलवायु परिवर्तन को के प्रभाव को कम कर सकती हैं और उनमें मदद भी कर सकती हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के माहौल को, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखें। इसलिए वनवासियों को केवल हम ये नहीं कह सकते हैं कि वे जंगल में रहते हैं, उनके साथ अगर हम मिलकर बैलेंस बनाते हैं तो इस बैलेंस से न सिर्फ हमारी प्रकृति संरक्षित रहेगी बल्कि हम एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाने में सफल हो सकेंगे। दोस्तों, वैज्ञानिक अनुसंधान की अगर बातें की जाए तो वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ यदि वनवासियों की सोच, उनके टेक्निक्स को मिलाया जाए तो हम वनों का संरक्षण आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में प्रकृति के साथ जुड़ा रहना ही जरूरी नहीं है बल्कि प्रकृति के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण और सतत विकास में जो वनवासियों की भूमिका है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस तभी बनता है जब हर पक्ष अपने आप में अपने कार्य को लेकर बिल्कुल सजग रहता है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। वार्ता के अंतर्गत आप सुन रहे थे पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में वनवासियों की भूमिका। फिलहाल अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में।

200 मिश्रित गीत संगीत के कार्यक्रम गुलगुलचन में आप सभी का स्वागत है। सोनू निगम की आवाज के साथ आप सुन रहे थे इस गीत को। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों के तराने आज के कार्यक्रम में आपका साथी बनेंगे। दोस्तों, फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय 6:37:03। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर पर 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं।

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:48 और सेकंड का अगर कहें तो बस 9 सेकंड हुए हैं। तो आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है गुलगुलशन। गुलगुलशन के अंतर्गत अब आप सुनेंगे चित्रा सिंह की आवाज में एक बेहद ही बेहतरीन गजल। आइए सुनते हैं इस गजल को जिसमें बोल है इश्क फना का नाम है।

अलीशा चिनॉय की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, और इस गीत को सुनते सुनते स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है फिलहाल 6:54, और समय हो चला है आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेने का। और चलते चलते आप सभी के लिए जगजीत सिंह के साथ चित्रा सिंह की आवाज, साथ ही आवाज है विनोद सहगल की, आइए सुनते हैं इस गीत को, इस गजल को कार्यक्रम गुलगुलशन के अंतर्गत।

0: अर्ज किया है
1: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
2: रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत खूब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये

0: उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन को रोक दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले तनाव बढ़ाने वाले हैं और यूएई की सुरक्षा, स्थिरता तथा संप्रभुता के लिए खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यूएई ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। उसने इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। यूएई ने मिसाइलों से जॉर्डन को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की। AFC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4th भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today held bilateral talks with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during the meeting discussed various aspects of bilateral ties. They reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Prime Minister Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi and his Armenian counterpart Pashinyan during the talks discussed ways to further strengthen bilateral cooperation across various areas including defence, economic, pharma, science and technology, culture and education. Tomorrow, on the second and final day of his visit to Kyrgyzstan, Prime Minister Modi will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization in Bishkek. India's real GDP has observed a growth rate of 7.8% in the first quarter of the financial year 2026-27 against the growth of 6.9% against the same period of the previous financial year. The Indian economy has sustained growth momentum despite global headwinds. The nominal GDP has also registered 10.3% growth during the first quarter of the current financial year. The Minister of Statistics and Program Implementation today released the quarterly estimates of the GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. Prime Minister Narendra Modi has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% in the first quarter of the financial year 2026-27 a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of country. Despite oil price shocks, supply chain disruptions and global uncertainties. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin held a bilateral meeting on the sidelines of the SCO summit in Bishkek a short while ago. The two leaders discussed bilateral ties and regional issues. They also reviewed ways to expand trade, economic ties and supply chain resilience between India and Russia. The government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Minister for Electronics and Information Technology, Aswini Vaishnav, said this while addressing the media in New Delhi today. Meanwhile, the India Electronics and Semiconductor Association has hailed the official notification of Semicon 2.0. In a statement, the association said that a comprehensive approach can significantly deepen India's semiconductor capabilities, attract large-scale investments, create high-value employment, and strengthen India's position as a trusted global semiconductor partner. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said India and Qatar share a warm and enduring partnership with energy cooperation as one of its key pillars. The minister met newly appointed India's ambassador to Qatar, Dr. K. Srikar Reddy. In a social media post, Mr. Puri highlighted the 20-year LNG agreement between Petronet LNG and Qatar Energy that secured over 7.5 million tons of LNG annually from 2028 to 2048. The draft electoral roll for Delhi was published today after the completion of the special intensive revision SIR, which began on the 20th of June and culminated on the 17th of August. According to the draft electoral roll, out of 1,45,10,299 electors, a total of 97,53,577 voters have submitted the enumeration forms. In table tennis, India's Ankur Bhattacharjee won his maiden men's singles title at the WTT Feeder Olomouc tournament at Cheku. The world number 78 defeated third seed Deni Kozul of Slovenia 3-1 in the final. Ankur had earlier secured the men's doubles gold with compatriot Akash Pal, defeating Hungarian-Polish pair of C. András Santosi and Alan K. Jalowski 3-1 in the final. And that is the end of this news bulletin.
2: Akashbani, Kolkata. Unushtan shunchen Sanchoita Prochar Torange. Medium wave 297.6 metere, orthat 1008 kilohertz e. Shuru hocche Unushtan Shilpo Shonglap.
3: Akashbani, Kolkata. Ekhon shunben শিল্প সংলাপের অনুষ্ঠান।
4: আজ আমরা কথা বলবো ন্যূনতম মজুরি আইন নিয়ে। এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আজ আমরা স্টুডিওতে পেয়েছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনার মাননীয় পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী মহাশয়কে। নমস্কার স্যার।
5: নমস্কার।
4: প্রথমে যেটা জানতে চাইব, ন্যূনতম মজুরি আইন কি?
5: ন্যূনতম মজুরি আইন হচ্ছে এমন একটা আইন যেটা ভারতবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণ করে। এটা 1948 সালে প্রণীত হয়েছিল এবং আপনারা জানেন কর্মসংস্থানকে দুভাগে ভাগ করা যায়, সংগঠিত ক্ষেত্র এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র। কিন্তু আমাদের এই মজুরিটি, ন্যূনতম মজুরির যে হার, সেটা কিন্তু সংগঠিত এবং অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্যই ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে। এই আইনের লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা এবং মজুরি, একটা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে মজুরির বৈষম্য যাতে রোধ করা যায় এবং নিয়োগকর্তাদের ওপরে একটা বিধি এটা মেনে চলতে হবে, এরকম একটা বিধান এই আইনে করা হয়েছে। এবং আইনটিতে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে শ্রম পরিদর্শক এবং অন্যান্য সরকারি আধিকারিকদের মাধ্যমে এর যে আইনগত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ন্যূনতম মজুরি বলবৎ হবে এবং ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ সংশোধন হবে এবং নির্ধারিত সংশোধিত যে মজুরি থাকছে সেটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে আপডেট করা

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:31। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। और इस कार्यक्रम को लेकर यानी कि दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। दोस्तों, दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण में आप सभी का स्वागत तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि आज हम दो विषयों पर करने वाले हैं बातें। सबसे

जो पहला विषय है वो पहला विषय है आज का आई डोनेशन फोर्टनाइट, और इसके साथ ही बातें होंगी इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे के विषय में। दोस्तों, कहा जाता है कि आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि दुनिया को महसूस करने की खिड़की हैं। लेकिन सोचिए, यदि किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाए या फिर उसे दुनिया देखने का अवसर ही न मिल सके, तो इससे बड़ा उपहार जो हम दे सकते हैं वो उपहार होगा अपने नेत्रों को दान करके, ताकि जो व्यक्ति आज तक दुनिया नहीं देख पाया वो इस दुनिया को देख सके। इस मानवीय भावना को बढ़ावा देने के लिए भारत में हर वर्ष आई डोनेशन फोर्टनाइट यानी नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। और अभी ये जो अभियान है, ये नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूक करने और मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। नेत्रदान का अर्थ है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आंखों से जो है उनका उपयोग जो है उपयोगी जो कॉर्निया है वो जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए, ताकि उसके उपचार से, उसके इस्तेमाल से वो व्यक्ति दृष्टि प्राप्त कर सके और उसे मदद मिल सके जिसकी रोशनी कॉर्निया से जुड़ी समस्या के कारण चली गई हो। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेत्रदान मृत्यु के बाद किया जाता है। जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति की आंखें जो हैं वो उनकी सुरक्षा करना हमारा एक तरह से योगदान हो सकता है, लेकिन नेत्रदान जो है वो मृत्यु के बाद किया जाता है। इसलिए इससे जो जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच मौजूद हैं, उन्हीं भ्रांतियों को हटाकर दूर करके जानकारी फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भारत में आज ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉर्नियल दृष्टिहीनता के कारण देखने में कठिनाई का सामना जो करते हैं, और साथ ही ऐसे में नेत्रदान समाज के लिए एक अमूल्य योगदान बन चुका है। और नेत्रदान केवल आंखों का दान नहीं है।

दर्पण की एक नज़र में आज जो अगले विषय पर हम बात करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस। दोस्तों, ये जो विषय है ये भी बेहद महत्वपूर्ण विषय है। ये दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने ओवरडोज के कारण अपनी जान गंवाई और उनके परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करने का विशेष अवसर भी है और साथ ही साथ समाज को ओवरडोज की रोकथाम के प्रति जागरूक करने का भी महत्वपूर्ण दिन है। तो दोस्तों, ओवरडोज आखिर क्या होता है इसके बारे में जानना भी जरूरी है। ओवरडोज उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में किसी दवा या फिर अन्य नशीले पदार्थ की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि शरीर उसे सुरक्षित रूप से संभाल न पाए। इसका असर मस्तिष्क, सांस लेने की प्रक्रिया, हृदय और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ सकता है। ओवरडोज कई कारणों से होता है। कभी ये दवाओं के गलत इस्तेमाल के कारण होता है तो कभी नशीले पदार्थों के सेवन से। कुछ परिस्थितियों में अलग अलग पदार्थों को एक साथ लेने से भी गंभीर खतरा बढ़ सकता है। इसलिए ओवरडोज को केवल किसी एक व्यक्ति की गलती या कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक गंभीर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है जो कि सामाजिक समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है, जिसके लिए जागरूकता बढ़ना, रोकथाम होना और साथ ही उपचार करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग नशे की समस्या या निर्भरता से जूझ रहे होते हैं उन्हें भी कई बार अपमानित किया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है, लेकिन फिर उससे जो समस्या है वो कम ना होकर बढ़ जाती है और ओवरडोज की स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में जरूरी है कि जागरूक बने, क्योंकि जागरूकता जीवन बचा सकती है और समय पर चिकित्सा सहायता करके हम अगर किसी की जिंदगी बचा सके तो ऐसे में हमारा जो योगदान है समाज के प्रति वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय 7:36:55 आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। कार्यक्रम दर्पण में आज यानी सोमवार की शाम एक नजर के बाद हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं साहित्य सरिता। आज के इस अंक में किस विशेष साहित्यिक पर्सनैलिटी या यूँ कहें किस विशेष रचनाकार के विषय में होगी बातें, उसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी समय हो चला है कि मैं आपको एक बेहतरीन तराना सुनाऊं। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये तराना।

बेहद ही रोमांटिक सा ये तराना गहरा हुआ। आप सुन रहे थे 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता के संचेता चैनल पर। दोस्तों, आज कार्यक्रम दर्पण के साहित्य सरिता के अंतर्गत हम एक ऐसी लेखिका के विषय में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने प्रेम को महसूस किया, दर्द को महसूस किया, दर्द को शब्द दिए और साथ ही स्त्री मन के उन आवाजों को साहित्य में जगह दी जिन्हें समाज में अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। एक ऐसी लेखिका जिसने सीमाओं और बंदिशों से परे जाकर लिखा, एक ऐसी कवित्री जिसकी कलम में प्रेम भी था, विद्रोह भी था और इंसानियत की गहरी पुकार भी थी। एक ऐसा नाम जिसे हम बहुत ही खूबसूरती से जानते हैं, मैं बात कर रही हूँ अमृता प्रीतम की। दोस्तों, आज 31 अगस्त है और आज के दिन अमृता प्रीतम के विषय में बातें करना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? वैसे तो अमृता प्रीतम की रचनाएं, उनकी जो लेखनी है वो हमारे सामने

ने अक्सर आ जाती हैं, उनके प्रति भावनाएं भी हमारे मन में जागती हैं। लेकिन अमृता प्रीतम केवल पंजाबी और हिंदी साहित्य के महान लेखिका ही नहीं थी, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की एक साहित्यिक इतिहास की एक ऐसी आवाज थी जिसने अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक हलचलों को बेहद संवेदनशीलता से शब्द दिए। दोस्तों, आज अमृता प्रीतम के विषय में हम बातें कर रहे हैं क्योंकि आज है 31 अगस्त और आज ही के दिन 1919 में ब्रिटिश भारत के पंजाब क्षेत्र के गुर्जरावाला में जन्म हुआ था अमृता प्रीतम का। दोस्तों, उनका बचपन एक ऐसे वातावरण में बीता था जहां साहित्य, कविता और विचारों का प्रभाव था। उनकी मां का निधन तब हो गया जब अमृता प्रीतम बहुत ही छोटी थी और इस व्यक्तिगत दुख ने उनके भीतर जो संवेदनशीलता थी उसको और भी गहरा कर दिया। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दी और साथ ही साथ सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में उनका पहला काव्य संग्रह, कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। ये उस समय की बात है जब एक लड़की का साहित्य और सार्वजनिक जीवन में अपनी आवाज के साथ सामने आना आसान नहीं था, लेकिन अमृता प्रीतम ने अपनी राह खुद बनाई। प्रेम और स्त्री की स्वतंत्रता आवाज अमृता प्रीतम की रचनाओं में मिलती है। अमृता प्रीतम के लिए प्रेम रोमांस नहीं बल्कि प्रेम स्वतंत्रता था। प्रेम अपनी पहचान खोजने का माध्यम था और प्रेम उस समाज के विरुद्ध आवाज भी उठाने का एक जरिया था जो स्त्री के जीवन को परंपराओं और सामाजिक अपेक्षाओं में बांध देना चाहता था। अमृता प्रीतम ने स्त्री को केवल किसी बेटी, पत्नी या फिर माँ के रूप में नहीं देखा, उन्होंने स्त्री को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में भी प्रस्तुत किया जिसके अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं और अपनी निर्णय लेने का अधिकार भी। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी स्त्री विमर्श का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। विभाजन के और अमृता प्रीतम के विषय में अगर बात की जाए तो 1947 के बाद जब भारत विभाजित हुआ तो ये केवल जमीन का विभाजन नहीं था, ये लाखों लोगों के रिश्तों और स्मृतियों का बिखरना भी था। और ऐसे में अमृता प्रीतम ने विभाजन की त्रासदी को बहुत ही करीब से महसूस किया और इस दर्द ने उनकी लेखनी को हमेशा से बदल दिया, हमेशा के लिए बदल दिया।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ए दिल है मुश्किल फिल्म से टाइटल ट्रैक, और हम बातें कर रहे थे अमृता प्रीतम की विषय में। दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान की यदि बात की जाए तो अमृता प्रीतम को उनके साहित्यिक योगदान के लिए अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे महत्वपूर्ण सम्मान भी मिले। वर्ष 2004 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। लेकिन किसी लेखक की सबसे बड़ी पहचान पुरस्कार नहीं, बल्कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पाठकों के दिल में उनकी जगह और उनका जीवित रहना। अमृता प्रीतम आज भी अपने पाठकों के बीच जीवित हैं। अमृता प्रीतम के विषय में अगर कुछ भी कहा जाए, वो कम इसलिए है क्योंकि उनकी रचनाओं में न सिर्फ स्त्री में विमर्श देखा जा सकता है, बल्कि स्त्री की उन भावनाओं को देखा जा सकता है जिन भावनाओं के प्रति हम कई बार स्त्रियां होकर भी खुद को नजरअंदाज करते हैं। तो आज उनके जन्म दिवस पर उन्हें ढेर सारी श्रद्धांजलि सम्मान के साथ। फिलहाल अमृता प्रीतम के विषय में इतना ही। आप सुन रहे थे 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, और इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण में आज बस इतना ही, और दर्पण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक ये जो विशेष अंक है या सेगमेंट है जिसे हम साहित्य सरिता के रूप में जानते हैं, जिसमें बातें हुई अमृता प्रीतम के विषय में। चलते चलते आप सभी के लिए अलका याग्निक के साथ अरिजीत सिंह की आवाज में आज के कार्यक्रम का ये गीत सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत।

0: एक्टिव पॉडी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए

0: आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
0: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ. के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट LNG और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के LNG समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि NDA सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी GDP वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल

0: बारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत ने विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और

कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्य

0: श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days.
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: President Vladimir Putin showed

0: नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थीं। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है, तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों, हम बताएं कि विषय जो है हमारा, बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, नंबर हैं 0112331041 और 23717117 23717106 और 233144444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो भूलिए नहीं 011 जरूर डायल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों, हम इंतजार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूं कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल। जी

0: जी अंशु कुमार जी बोलिए।
1: नमस्कार सर।
0: जी जी जी, क्या है आपकी जिज्ञासा? हाँ हाँ,
1: स्वागत। सवाल यही था जो हम लोग को जब भी ब्याज है हम लोग हेलो
0: जी जी
1: हम लोग जब भी ब्याज है तो हम लोग को जो पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा निकालने से क्या क्या हम लोग को करना चाहिए? क्या हम लोगों को ओटीपी भी बताना चाहिए? अगर ओटीपी बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है? और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या ये सब हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि ओटीपी नंबर अगर कोई और पूछता है तो संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई भी बैंक आपसे ओटीपी की जानकारी नहीं मांगेगा, ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। ओटीपी केवल आपका पर्सनल के लिए है। जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ऑनलाइन निकाल रहे हैं, तो आपको ओटीपी खुद आपको डालना है और उसी हिसाब से आपका पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। या निकालना है एटीएम पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है। किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
0: जी हाँ, ओटीपी तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया, हमें महाप्रबंधक आप रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना ओटीपी जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ शुभमोय भट्टाचार्य जी से, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, कि आप हमें बताइए, कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी?
3: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: नमस्कार जी।
3: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूं। आज किसी भी भारत के कोने में कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज का बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं QR कोड से पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा अपना खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटाना करते हैं।
0: जी,
3: ये जो चीज हुआ है लोगों को पूछने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं समझते हैं कि बटुए में पैसा रखकर या कहीं पे कुछ भी चीजों का जो पुराने समय का जो और पुराने समय कह रहा हूं मतलब कुछ ही साल पहले का
0: जी जी
3: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी हैं और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, दूसरी तरीके से मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आज के रुपए का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपए का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूँ ये भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है।
0: जी शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूँ अब अरोड़ा साहब से, जो हमारे

0: विशेषज्ञ हैं और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए देखिए जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है? तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को इन योजनाओं ने प्रभावित किया है।
1: जैसा कि अभी भट्टाचार्य जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन, केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहां तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इसे वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई एलपीजी की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इनफॉर्मर मनी लेंडर्स हैं उनसे जो 40-50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो हमारे छोटे हैं गांव में किसान हैं, जो रेड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लेंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, यूपीआई के थ्रू सारी पेमेंट आपका यूपीआई के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट असेस है वो हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो ये सारी चीजें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है। पेंशन की सुविधा अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट पीएमजेडीवाई के वो भी खुल रहे हैं।
0: जी, तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले भी काफ़ी बढ़े हैं, तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को? क्योंकि प्रायः ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
1: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है इससे हमारा काफ़ी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओटीपी आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे जरूरी है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत जरूरी है, सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहां ये हमें फायदा हो रहा है यूपीआई से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60-66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली।
0: जी जी, जी।
1: और आप पर डे 20 ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं और 1 लाख की मॉनेटरी कैप रखी हुई है और 5 लाख की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
2: जी नमस्कार, जितेंद्र विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़, ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी इसमें बीसी मैं भी कॉरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, बीसी हूँ। और मैं मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी बजट में हम लोग जैसे कि यूपीआई से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो यूपीआई से जो बढ़ा हुआ है इसमें, इस पर कुछ चार्जेस से कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इसमें बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर, जितना जिसे हम लोग क्यूआर कोड से जो हम लोग पेमेंट करते हैं, इसका इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं, तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह, इस पर थोड़ा सा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे जी।
1: हाँ, ये जो चल रहा है अब, ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, या बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर एमडीआर के जो चार्ज लग रहे हैं वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए हैं, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है। अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे
0: जी। तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं एम आर चौधरी। कहिए चौधरी साहब, क्या है जी जी, कहिए सवाल।
3: ये मैंने फाइनेंस में भी सेक्रेटरी को चिट लिया, उसका कोई जवाब नहीं है
0: आपका
3: आम पब्लिक के लिए
0: जी। तो लगता है संपर्क कट गया है। और आपसे हम, खैर, एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्राय लोगों से सुनते हैं, वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं है कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। और ये जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर ये जो समावेशन की जो हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं, क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
1: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिबिल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बैंक आपसे सिबिल नहीं मांगेगा। इसमें जैसे फर्स्ट ट्रांच में 15,000 रुपये लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांच में 50,000 है, तो इसमें कोई भी आपको जो है सिबिल वगैरह की बैंक नहीं मांगेगा, नहीं सिबिल की जरूरत पड़ती। हाँ, मुद्रा योजना में जरूर है कि उसको कोई डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, अगर कोई डिफाल्टर है तो उसमें मुद्रा योजना में अधिकतर हमारा
0: जी बिल्कुल आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिबिल स्कोर की कहां जरूरत है और कहां नहीं। एक सवाल हम ले रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं श्रोता शिमला से, और राकेश जी कहिए आपका क्या प्रश्न है।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हम बैंक नहीं जा सकते, हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा।
0: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस विषय में तो जाहिर है चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े रहे तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे जी।
1: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहाँ का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं।
0: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि एआई की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में,

0: इसे एक विस्तार देने में, चूंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए।
1: बिल्कुल, और सबसे पहले मैं कहूंगा कि एआई, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे किस हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है। तो एआई, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस
0: जी।
1: ये एआई के मॉडल है, डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है, तो उनका जो पेमेंट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्यूआर कोड से, यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो देखकर ही एआई एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है। ये बहुत बड़ा आयाम है जिससे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को, यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में ये एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको सारे द लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर, उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है।
0: महत्वपूर्ण जानकारी शुभमोय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से है लाइन पर, धर्मवीर जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
2: मुनीश जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार।
0: जी सर,
2: मैंने पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो मैं अदर बैंक में, प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, तो हमने वहाँ स्किप कर दिया था। पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे। ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि तो वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ निकल गई है। फिर किसी ने बताया कि बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है। ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
0: जी जरूर जरूर।
3: धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहां से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ओम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वहां से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और वहां से अपना शिकायत का निवारण करा सकते हैं।
0: जी, तो उम्मीद है कि धर्मवीर जी आपको आपकी जिज्ञासा का ये समाधान हो गया होगा, और आप इस तरह से संपर्क करेंगे तो आपको अपनी शिकायत के समाधान में सफलता मिलेगी। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, चर्चा का साप्ताहिक मंच है ये हमारा, और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी टैग Ask AIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI ने जो भूमिका निभाई है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में से विस्तार देने में, तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो लैंडिंग सिस्टम है

0: उसमें किस तरह से एआई मददगार हुई है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एआई ने संभव कर दिखाई है।
1: अभी जो आप प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
0: जी,
1: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार्ड छुपी हुआ है यानी कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको इस संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.ai करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
0: जी।
1: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना। और ये AIML पावर टूल ट्रांजैक्शन पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। बैंकर ट्रेंड होते हुए भी उनके लिए इतना इतना डिटेल देखना इम्पॉसिबल रहता है। और इस चीज को कि किसके अकाउंट का पैसा किस वक्त कहां से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही म्यूल अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं आयामी चीज
0: होगा। महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है AIIC के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमसे, प्रकाश राउत। कहिए प्रकाश जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: मेरा यह प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है
0: जी,
2: क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा उसके ज्यादा दंड होते है, ज्यादा चार्जेस लगते है, उस पर जीएसटी बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
3: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफी ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आप में क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देने पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा
0: जी। एक और सवाल हमारे पास आया हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल।
3: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है या OTP किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत जरूरी है
0: जी। देखिए अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में, वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभमोय जी आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो वो किन दस्तावेजों के साथ तैयार रहें और बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीजें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और में समर्थन में कहा था कि बहुत सारे जैसे मुद्रा स्कीम है

मैं फिर भी कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो QR कोड है उसके जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हो उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है UPI।

0: श्रम सेतु
1: जी
0: जो
1: जी
0: अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है,
1: महत्वपूर्ण है जानकारी। और शुभमोई जी, दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभमोई भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: दोस्तों। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतजार करते हैं, और आप हमें जरूर लिखिए airnsdtalks@gmail.com पर। और इसके साथ ही दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: বিরোধিতা নিষ্পত্তি হলো। এর আওতায় বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মানুষ পানীয় জলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের কয়েক লক্ষ কৃষকে সেচের জল পাবেন। গঙ্গা ভারত বাংলাদেশের দেশের মধ্যে 30 বছরে গঙ্গাপথে জলবন্টন চুক্তি পুনর্নবীকরণের আগে পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির প্রবাহ, বন্দর ও শিল্পের স্বার্থ যাতে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দাবি জানিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ওই চুক্তির মেয়াদ আগামী ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে আগামীকাল ছত্তিশগড়ে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশে আগামী দুদিন ভারী বৃষ্টির প্রভাব অবশ্য রয়েছে। দিল্লিতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর এর খসড়া ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী 1,45,10,299 জন ভোটারের মধ্যে 97,53,577 জন ভোটার ইনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন। ফুটবলে এএফসি অনূর্ধ্ব 20 বিশ্বকাপ এশিয়ান কাপ 2027 বাছাই পর্বে জয়ের মধ্য দিয়ে অভিযান শুরু করেছে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে ভবতারিণী। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: अपनी किर्गिस्तान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इन द्विपक्षीय बैठकों में आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के साथ ही सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते संपर्कों पर भी चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्ड डी वेवर बुधवार से 3 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर उपलब्ध है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4th भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टन स्वाइडर इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में GDP में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
2: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक बचाव उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है, जबकि 4247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री बलिंद्र शाह ने बाढ़ को अभूतपूर्व और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए मेसी के 20 वर्ष के करियर का अंत हो गया। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमेरिका खिताब जीतने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफाई

0: क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 66वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। और लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम आरएस रघु विद द वर्ल्ड न्यूज। Headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense. Says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Also meets Kyrgyz Republic and Armenian leaders. India's GDP jumps to 7.8% in first quarter of current fiscal, despite global headwinds. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses over 900. Over 4,000 remain missing. And Lionel Messi announces retirement from international football. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days.
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्केन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला